सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM, Jio Bindas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास.
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। रेडियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: ओह नो, फिर से स्कूल.
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
5: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर rewards.

हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज़ आई एम अ प्राउड इंडियन. 106.3 FM रेडियो ओलिव, जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फिर से स्कूल? अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रिडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

0: land of many languages and culture. The land of rich heritage and diversity. India. Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. A very happy Independence Day.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
2: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
3: A very happy Independence Day.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: रेडियो ऑलिव पर
3: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है।
2: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Hi दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से I want to wish all the Indians a very happy Independence Day because I'm a proud Indian.
1: 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindas. Awesome.
2: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: मैं हूं अनिल कपूर।

के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

1947 से 2026, पूरे 80 साल हमने सिर्फ साल नहीं गुजारे, हमने इतिहास लिखा है। वो आजादी जो कभी एक ख्वाब थी, आज हमारी पहचान है। 80 years of freedom, millions of dreams, but one identity, Indian. इस 15th August को चलो सिर्फ अपने घर पर ही नहीं, अपनी आंखों में, अपने सपनों में फिर से तिरंगा फहराएं। Celebrate 80 years of pride and emotions with Radio Olive. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की

बिल्कुल यही गाना मेरे मन से निकलता था जब मेरे जो रिलेटिव्स आते थे और वो मुझसे पूछते थे कि फ्यूचर का क्या प्लान है, तो मम्मी यही बोलती थी, इसके होठ तो जैसे सिल ही गए हैं, हमारे रिश्तेदारों से तो बात ही नहीं करनी होती इसे। जितने भी इंडिया के लोग हैं आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में कल वीकेंड भी मनाया है हमने, सो उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोगों की, कुछ खुश नसीब लोगों की आज भी छुट्टी है, तो उन लोगों से भी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। एंड आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस जो है अपने रेडियो सेट से चिपक के बैठे रहना है और अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते रहने, क्योंकि हैंड पिक्ड गाने आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने को मिलेंगे जो शायद बहुत दिनों से ना वो कहीं दिल के बहुत अंदर ऐसे घुस के बैठ जाते हैं एंड वो अचानक से आपको सुनाई देते हैं और आपको अच्छी वाली फीलिंग आती है। वैसे गाने भी हम सुनेंगे, कुछ ट्रेंडिंग गाने सुनेंगे, कूल गाने सुनेंगे, एंड इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा फन मस्ती मज़ा करने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है, आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए 3311063 पर गुड मॉर्निंग लिख कर मेरे मॉर्निंग को और ज़्यादा गुड बना दीजिए, हैपनिंग बना दीजिए। आज बहुत सुबह सुबह उठी हूँ मैं, तो थोड़ी सी जो है नींद आ रही है। आपकी गुड मॉर्निंग से, आपके एक सिंगल मैसेज से जो है मेरी नींद छू मंतर हो सकती है। सो जल्दी से फ़ोन उठाइए 3311063 पर मैसेज कर दीजिए। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना तेरा हो जाऊँ आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे इन्जॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: रहा है?
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिजो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिजो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिजो।
2: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: आतिफ असलम की आवाज में गाने का नाम मुसाफिर आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर। तो जी आपकी कशिश जो है वो लौट कर वापस आ गई आपके लिए उसका शो लाइफ मस्त है लेकर जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार आज सुबह जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जल्दी उठ गई थी ना, मतलब मैं 5:30 के आसपास जो है यानी 5:30 के आसपास पूरी तरीके से रेडी होकर बाहर खड़ी हो गई थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ मौसम में थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन फिर 10 मिनट बाहर खड़े होने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, बहुत जल्दी जज कर लिया मैंने इस मौसम को। फिलहाल अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इस वक्त दोहा में 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ह्यूमिडिटी तो अब मैं रोज़ क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा है कि 45 डिग्री सेल्सियस जो है ऐसा लगेगा टेम्परेचर आपको, मतलब है 42 लेकिन लगेगा 45। एंड अगर आज भी आपको अपने लव्ड वंस के साथ जो है सनसेट देखना है तो वही 6 बजे के आसपास आपको सनसेट होते हुए दिख जाएगा। बाकी हवा ज़्यादा तेज़ आज चल नहीं रही है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हवा चलेगी। एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अब तो पता है मेरे दोस्त और मेरे जानने पहचानने वाले एंड जिनके साथ में रहती हूँ वो लोग मजाक उड़ाने लग गए यार मेरा की कशिश कितनी बार याद दिलाती हो सनस्क्रीन लगाना, इतनी बार तो तुम खुद नहीं लगाती हो। अब देखो यार मेरी स्किन खराब हो जाए मैं चलने दे सकती हूँ लेकिन आप लोगों के स्किन के साथ सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं कर सकती, तो जल्दी से सनस्क्रीन लगा लो। बाकी एक बहुत छोटी सी इल्तिजा आप लोगों से मैंने की थी कि अपना फ़ोन उठाइए एंड जल्दी से जो है मुझे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर, बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है, कल का दिन कैसा गया। एंड बस कुछ नहीं ज़्यादा मतलब आलस आ रही है आपको तो एक गुड मॉर्निंग लिख दो यार। फिलहाल हीट को बीट करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर है आर आई के रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज अक्षय कुमार
1: और मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: गैंगस्टर मूवी से ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं. अब देखिए, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जो इंडिया से हैं, उन्हें आज के दिन में काफ़ी फोमो जो है वो फील हो रहा होगा, क्योंकि मतलब एक ना एक बार आपने अपने स्कूल में देश रंगीला पे डांस जरूर किया होगा, या तो फिर मतलब कहीं से ढूंढ के वाइट कपड़े पहने होंगे, या फिर ट्राई कलर जो है कपड़े आपने ज़रूर पहने होंगे आज के दिन, क्योंकि आज 15 अगस्त है. 79 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए, 80th इंडिपेंडेंस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड मेरा इंस्टाग्राम लिटरली भर चुका है देश रंगीला की रील्स से एंड ऐसी बहुत सारी रील्स से. अब सबका कोई ना कोई जो है एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा होता है इंडिपेंडेंस डे से. जैसे कुछ लोगों के स्कूल में लड्डू मिला करते थे, कुछ लोगों के स्कूल में जो है वो वेफर्स चॉकलेट्स मिला करती थी, एंड अब कुछ लोगों को पूरा पूरा सैंडविच का डब्बा भी मिलता है. सो अलग अलग टाइप के जो है लोग हमें देखने को मिलते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, लेकिन एक टाइप के लोग ज़रूर मिलते हैं जो मतलब एक चीज़ है जो सब में कॉमन है, और वो है वाइब करने में. सो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो यू नो अमेजिंग गानों पे वाइब करते हैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, मतलब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कुछ एक वाइब वाले गाने हैं जिन पे यू नो डांस करने में, जिनको एंजॉय करने में और ज़्यादा एक्स्ट्रा मज़ा आता है. सो बस उनके लिए कुछ स्पेशल गाने जो है वो हम आपको सुनाने वाले हैं, प्लेलिस्ट हमने लगाई हुई है. सो बस इंजॉय कीजिए एंड आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं.
1: Independence Day Special. Independence Day Special. Radio Olives.

अब देखिए वायु जी अगर कह रहे हैं कि बातों बातें करो तो फिर हम क्यों बातें ना करें। मेरे को तो वैसे भी बातें करने में बहुत मजा आता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखो यार, लाइफ तब मस्त होती है जब लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। अब एक बहुत ही जेनरिक सी मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आपकी लाइफ में आपकी मतलब अगर आप मेल हैं और आपके पास अपनी पार्टनर है, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकती है। यस, सो ये रिसर्च में पाया गया है कि अपने पार्टनर की कुछ आवाज़ों से, जैसे कि उनकी चूड़ी की खनक की, उनके झुमकों की खनक की, पायल की आवाज़ की, इससे जो है अगर ये सब आप जनरली सुनते रहते तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है, जब आप ये आवाजें सुनते हैं और आपको पता होता है कि अच्छा ये हमारे पार्टनर की आवाज है या पार्टनर से आ रही आवाज, तो आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है, हम अकेले नहीं है लाइफ में, हमारे साथ कोई है। और ये सिमिलरली अगर आप फीमेल हैं तो मेल के साथ होता है, लेकिन मेल्स में एक खुशबू के साथ होता है। सो अगर आपके पार्टनर की एक खुशबू जो है वो आपको समझ आती है और वो आपको आ रही है, सो आपको जो है उस खुशबू से हमेशा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती रहेगी कि हाँ यार हमारे साथ कोई है जो हमारे साथ खड़ा है एंड हमारे हर दुख सुख में हमारा साथी है। सो स्ट्रेस कम करने की सबसे बेस्ट जो है टेक्निक यही होती है कि अपने पार्टनर का साथ आप हमेशा अपने साथ इमेजिन करते रहे। एंड बाकी सिंगल लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आपका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। खैर वापस आ जाते हैं अपने मैसेजेस के पास कि आप लोगों ने मुझे जो है क्या कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो किए हैं। अस्मा जी ने सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हमारी कशिश लिखा है प्यार से, थैंक यू सो मच। ये मैं आपकी कशिश जब बोलती हूँ ना तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एंड आपकी कशिश बोलते हुए जो है अच्छा लगता है मुझे, एंड आपने हमारी कशिश लिखा है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा लग रहा है। एंड इन्होंने लिखा है लेट योर पॉजिटिविटी शाइन एंड ब्राइटन एवरीवन्स डे। ऑफकोर्स बस इसी कोशिश में जो है मैं हर रोज लगी रहती हूँ। एंड जाकिर मोहम्मद जी ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा है, गुड मॉर्निंग कहा है, थैंक यू सो मच। एंड मनी जी ने भी जो है रेडियो की एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो जो है वो भेजी हुई है। इमरान जी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है कि सलाम, एंड आज वो शायद वेकेशन से वापस आ रहे हैं, मिस यू दोहा। ओके दोहा को मिस, तो देखिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं भोपाल से बाहर आऊँगी तो मैं भोपाल को काफ़ी मिस करूँगी, लेकिन दोहा ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना अपनापन दिया है कि यार थोड़ा कम मिस करती हूँ मैं। फिलहाल एक ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर तो आप डिज़र्व करते हैं, सो ये गाना इन्जॉय कीजिए कॉकटेल 2 मूवी से। एंड कॉकटेल 2 मूवी अभी OTT पे जो है वो लॉन्च हो चुकी है, मैंने कल थोड़ी सी देखी है, अभी बताऊँगी आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिलहाल ये गाना एंजॉय करो और आपकी कसूस की जात कहते रहो जी गोविंदास।

0: land of many languages and culture. The land of rich heritage and diversity. India. Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव।

0: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की इस जोड़ी की तरह ही आपकी और मेरी जोड़ी भी तो है, मतलब आप खिलाड़ी और मैं अनाड़ी। अनाड़ी तो हूँ जो आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ कब से। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अनाड़ी मैं खुद को देखूँ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जो है काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में जो है अभी सीखने की कोशिश कर रही हूँ एंड स्पेशली आप लोगों से सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने प्यार से कितने पॉजिटिवली जो है आप लाइफ को देखते हो, वो प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपका मैं देखने की समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मेरे दोस्त आप एक खिलाड़ी एंड आपके साथ रहते रहते मैं भी वही बन जाऊंगी। खैर देखिए आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका मुद्दा बड़ा ही क्यूट सा है। सो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मैं एक पोस्ट पे पहुंची जहां पर एक लड़की ने पोस्ट करी है अपने हस्बैंड के साथ फोटो। अब आप कहेंगे कशिश यार इसमें क्या बड़ी बात है, जिनके हस्बैंड होते हैं अच्छे से पोस्ट वोस्ट करते हैं वो पोस्ट भी कर देते हैं, कुछ लोगों के जो हस्बैंड है वो साथ में फोटो नहीं खिंचाते हैं तो फिर अकेले की फोटो भी पोस्ट हो जाती है। लेकिन इन दीदी ने जो है क्या किया है, अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से इमोजीज से कवर कर दिया है ताकि किसी की नजर ना लग जाए। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्होंने यही मंत्रा जो है अपनाते हुए इन्होंने ऐसा किया है कि अपने हस्बैंड को छुपा दिया ताकि कोई देख ना पाए। बताइए जी ये भी कोई तरीका है। वैसे यही चीज़ जो है मेरे दिमाग में भी आई थी कि कर दिया तो क्या बड़ी बात है, सेलिब्रिटीज भी तो अपने बच्चों का फेस जो है वो इमोजी से हाइड कर देते हैं ना, या अलग अलग तरीके जो है वो अपनाते हैं अपने बच्चों का फेस जो है वो छुपाने के लिए। और बहुत सारे लोग अब यही करने लग गए, या तो वो पोस्ट नहीं करते हैं, पोस्ट करते हैं तो इमोजी लगा देते हैं। सो आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है कि क्या अपने हस्बैंड को ताकि कोई और ना देख ले ऐसे इमोजी से छुपाना क्या सही है? कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो से, इस पर ये गाना एंजॉय कीजिए, फिर इस पर जरा प्रॉपर डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे कि ये नज़र के लिए जो लोग आजकल कर रहे हैं नो नज़र प्लीज इमोजी लगाने से क्या कुछ होता है या नहीं होता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रही और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: A very happy Independence Day.
2: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबूसिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
4: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर rewards.

0: अजनबी मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कसूशन शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, कल मैं आई थी आप लोगों से जो है बहुत सारी बातें की मैंने 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने टेक शो पे, एंड वहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से आजकल जो प्राइवेसी है वो सिर्फ नाम की रह गई है, एंड अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो इंस्टाग्राम पे नहीं रहा है, तो आपके चैट जो है वो इंस्टाग्राम पढ़ सकता है एंड ग्रुप चैट्स जो है वो भी पढ़ सकता है, एंड एक जो है आपको फीचर दिया गया था जिसमें आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपकी कोई प्राइवेट कॉन्वर्जेशन हो जो आप नहीं चाहते कि कोई भी जाने तो आप उस मोड पे स्विच कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम ने ये कहा है कि यार क्योंकि कोई उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था तो हम सोच रहे हैं कि इसको वापस ले लेते हैं, हटा देते हैं। बताइए यार, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोग जो है वो प्राइवेसी टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जो है फोटो डाल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पूरा इमोजी ईवल आई वाला इमोजी जो है वो लगा दे रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इतनी प्राइवेसी दिखा रहे हैं कि अपने बच्चों की फेस के ऊपर इमोजी लगा देते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर इमोजी लगा देते हैं, अपने खाने के ऊपर इमोजी लगा देते हैं कि बस किसी भी तरह नजर ना लग जाए उनको, लेकिन फोटो भी डालेंगे। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ये क्या है। फिलहाल देखिए, एक ही चीज है जो मुझे समझ आ रही है और वो है इंडिपेंडेंस डे की प्लेलिस्ट जो है वो काफी सारे लोगों का दिल चाह रहा था, सो वो आ गया है आपके लिए। सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। ये गाने एंजॉय करके वापस आइए, फिर बातचीत जारी रखते हैं। स्टे ट्यून,
1: इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, रेडियो ओलिव्स।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज़ आई एम अ प्राउड इंडियन.
1: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
1: अपने वार्डरोब को रिडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड

मुझे अपने स्कूल टाइम की काफी याद आ रही थी एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे स्कूल गए हुए 5-6 साल हो चुका है एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि 2007 में जो है आवारापन रिलीज हुई थी एंड उस टाइम पे कुछ लोग जो हम लोगों में से काफ़ी एक्टिव लोग हैं, हमारे एक्टिव लिसनर्स हैं, वो उनमें से भी बहुत सारे लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे. सो 2007 में आवारापन मूवी जो है वो रिलीज़ हुई थी. मोहित सूरी ने इसे डायरेक्ट किया था एंड इमरान हाशमी जो थे इस मूवी में थे एंड तब ये मूवी जो है एक कमर्शियल हिट नहीं थी, मतलब बॉक्स ऑफिस पे उतने ज़्यादा पैसे जो है नहीं कमा पाई थी. लेकिन आवारापन 2 ने पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दी है, मतलब जनरली स्क्रिप्ट नहीं पलटी है, मतलब स्क्रिप्ट पलट दी है इन अ सेंस. बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छी रिपोर्ट जो है वो आवारापन की 2 दिखाई दे रही है. अब 14 अगस्त को जो है ये मूवी रिलीज हुई थी एंड कुछ नंबर्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग जो है दिख रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है. कुछ लोगों ने इसका ट्रेलर देखने के बाद, म्यूजिक लॉन्च होने के बाद जो है काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि नहीं यार ये पहले वाले की तो जगह नहीं ले पाएगी, इमरान हाशमी जो है वो अभी इससे पहले तक जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, ये वापस अपनी यंग वाली इमेज लाने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी सारी ऐसी क्रिटिसिज्म वाली बातें जो है वो हमने सुनने को मिली थी, लेकिन फिर भी इमरान हाशमी ने प्रूव कर दिया है कि अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी दूसरी तरफ. सो देखिए अभी कुछ मूवीज़ जो अभी अभी रिलीज़ हुई है पिछले कुछ टाइम में, उसमें हमें ये पता चला है कि यार बॉक्स ऑफिस जो रिपोर्ट है वो शुरू में थोड़ी सी ख़राब आती है लेकिन उसके बाद इवेंचुअली ग्रो करती है एंड OTT पे ज़्यादा प्यार जो है वो मूवीज़ को मिलता है. एंड पर इस मूवी के साथ ये उल्टा हो रहा है, पहले से बहुत प्यार मिल रहा है, अब आगे क्या लोगों का वर्ड ऑफ माउथ जो है जब स्प्रेड होगा, जब रिव्यूज़ बाहर आएंगे तो कैसा रहेगा वो पता नहीं. अभी तक रिव्यू देखो मैंने भी नहीं पढ़ा है. मैं सोच रही थी कि जाकर देख लूँ आवारापन 2, क्योंकि आवारापन 1 जो है जब मैं बहुत छोटी थी तब रिलीज़ हुई थी तो मैंने उतने ध्यान से देखी नहीं है, तो पहले वो देखूंगी एंड उसके बाद जो है पार्ट 2 देखूंगी. सो आप बताइए मुझे, अगर आपने देख लिया तो एक रिव्यू मुझे दे दीजिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी. बाकी मैं बात कर रही थी OTT पे, सो कॉकटेल 2 जो है वो OTT पे लॉन्च हो चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है एंड मैंने देखनी शुरू करी एंड मैं पूरी देख नहीं पाई. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार थिएटर में इस मूवी को देखने में ज़्यादा मज़ा आया था एंड अब OTT पे उतना मज़ा आ नहीं पा रहा है. आपका क्या कहना है ये बताइए मुझे 3311063 पर. फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द RRR आपकी रेडियो सेट्स पर. मैं वापस आऊँगा मूवी से. खैर ये मूवी मैंने जो है पिछले हफ्ते वो OTT पे देखी थी. सो स्टे ट्यून रही और आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Akshay Kumar.
1: और मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को Happy Independence Day.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

उस इंसान के बैकग्राउंड में ये गाना ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देता है जो भी अपने घर से बाहर निकला है काम करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए. बताओ सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए यार, अब अगर मैं बात करूँ फैशन की तो आपको हर रोज आती हूँ कुछ नया बताती हूँ, लेकिन आज मैं कोई एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ जिससे मैं तो अग्री नहीं कर पा रही हूँ. एंड ये इंस्टाग्राम का एक नया ट्रेंड है जो फैशन पे इस वक्त जो है काम कर रहा है. सो पर्पल कलर जो है, हमने ये देखा था कि लाइलैक कलर कुछ साल पहले बहुत ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब डीप पर्पल जो होता है ना वो काफ़ी वायरल हो रहा है. एंड इस डीप पर्पल का ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आप पहन लो, नहीं नहीं नहीं, डीप पर्पल को हेड टू टो विदाउट एनी अदर कलर जो है आपको स्टाइल करना है, ये इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है. पता नहीं क्यों मेरी फीड अचानक से डीप पर्पल कलर की हो गई है, सब लोग डीप पर्पल कलर पहन रहे हैं. वैसे तो आइस ब्लू जो है वो इस ईयर का, इस सीजन का जो है मेजर कलर रहने वाला था, लेकिन इसके आइस ब्लू के साथ साथ पता नहीं क्यों डार्क पर्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है. सो अगर आपने ऐसा आउटफिट अभी तक नहीं पहना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आध इवेंट पे या एक आध ओकेशन पे आपको एक बार डीप पर्पल जो है वो ट्राई करना चाहिए, बिकॉज डीप पर्पल जो है वो रॉयल है, और साथ में रॉयल होने के साथ साथ ना थोड़ा सा ऐसे अलग सा लगता है, मतलब डिफरेंट भी है. मतलब आपके रेड्स, पिंक्स, येलोज, ग्रीन्स के अलावा जो है अगर एक कलर है जो स्टैंड आउट करता है वो है पर्पल, डीप पर्पल. मतलब अपने आप में ऐसे ना एलिगेंस बाहर आ जाती है. मेरी मम्मी की जितनी एलिगेंट साड़ीज है ना, जितनी अमेजिंग बाहर पहनने वाली साड़ी है ना उनकी शादियों में जाने वाली, वो सारी पर्पल कलर की है. पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लगता था कि मम्मी ये साड़ी आपकी अच्छी वाली साड़ी है, पर्पल कलर की क्यों है. तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि साड़ी जितनी भी यू नो एस्थेटिकली प्लीजिंगली रॉयल चीज़ें होती है वो ज़्यादातर पर्पल कलर में हम साड़ियों में या एथनिक क्लोथ्स में बेसिकली देख पाते हैं, लेकिन अब ये मॉडर्न फैशन में भी आ चुका है. सो जल्दी से जल्दी पर्पल, डीप पर्पल कलर का आउटफिट जो है वो ट्राई कर लीजिए. फिलहाल चुनरी चुनरी जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो चुनरी भी पर्पल कलर की होगी तो मज़ा आ जाएगा. फिलहाल चुनरी चुनरी लेट्स गो गाना जो है इसे इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास. अच्छा।

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. Independence Day.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। 1947 से 2026, पूरे 80 साल हमने सिर्फ साल नहीं गुजारे, हमने इतिहास लिखा है। वो आजादी जो कभी एक ख्वाब थी, आज हमारी पहचान है। 80 years of freedom, millions of dreams, but one identity. Indian. इस 15th August को चलो सिर्फ अपने घर पर ही नहीं, अपनी आँखों में, अपने सपनों में फिर से तिरंगा फहराएं. Celebrate 80 years of pride and emotions with Radio Olive. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की

आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है जावर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए।

0: ये जो है हम कोशिश कर रहे हैं। और देखो मैं तो हर रोज आती हूँ, कोशिश करती हूँ, कल भी आई थी आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने टेक शो में एंटरटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी की बातचीत के साथ, लेकिन मस्ती और मजे के तड़का मार के। अब देखिए यार, अभी किसी का मैसेज आया था हमारे पास कि यार समर वेकेशन जो है वो खत्म होने वाली है, हम वापस आ रहे हैं एंड काफी मिस किया कतर को। सो देखिए समर वेकेशन जो है वो खत्म होने वाली है, लेकिन अभी जो है एक एक बैश बाकी है। सो रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है बैक टू स्कूल बैश अबू सदरा मॉल में इस 27th of August को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, जहां पर बहुत ही एपिक वाले गेम्स होने वाले, क्रेजी चैलेंजेस होने वाले एंड नॉन स्टॉप धमाल के साथ जो है स्कूल से पहले पार्टी होने वाली है। सो एंट्री के लिए बस आपको olive.qa पर जाना है, बैक टू स्कूल जो है फॉर्म फिल करना है एंड स्पॉट्स जो है वो लिमिटेड है। सो जल्दी जल्दी जाइए वेबसाइट पे एंड जाकर अपने बच्चे को, अपने आप को एनरोल कर दीजिए, ताकि बहुत ही अमेजिंग फन जो है वो आप मिस ना करें। फिलहाल मिस तो आपको हमारा अगला गाना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि MTV कोक स्टूडियो का मदारी गाना विशाल दुदलानी की आवाज में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: नाम है, मूवी का नाम है, एंड सच में ऐसी मूवीज देखने के बाद मुझे सच में फील होने लग जाता है यक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी दूसरी तरफ. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं. और देखिए लाइफ में कुछ चेंज हो या ना हो, ब्रांड्स के लोगो जरूर चेंज हो जाते हैं. इंस्टाग्राम ने जो है परसों, जैसे ही मैं जो है अपना स्क्रोल कर रही थी तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम ने अपना जो अपना नाम लिखने का जो तरीका है वो बदल दिया है. बिल्कुल उसी तरह जैसे हम स्कूल में नहीं करते थे समर वेकेशन के पहले और समर वेकेशन के बाद हमारी हैंड राइटिंग बदल देते थे, अचानक से कर्सिव से जो है हम बोल्ड लेटर्स में लिखने लग जाते थे और सबको ऐसे शॉक कर देते थे कि देखिए क्या चेंज आया है समर वेकेशन में. तो मुझे ऐसा लगता है कतर के लोगों का समर वेकेशन खत्म होते होते इंस्टाग्राम ने ये डिसाइड किया कि मैं भी अपना नाम अलग फॉन्ट में लिख दूंगा, अब अलग तरीके से लिख दूंगा. ज्यादा फर्क नहीं और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस फॉन्ट के चेंज होने से, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हाइप हो गया है कि जितने ब्रांड्स हैं सब जो है उसी फॉन्ट में अब अपना नाम लिखकर जो है वो पोस्ट कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है. और ऐसा लग रहा है कि किसी नए इंटर्न को बोला गया था कि एक काम करो कि कुछ नया करके दिखाओ, और उन्होंने ये फॉन्ट लिख दिया और बोला कि इट्स कूल. अब देखिए जेन ज़ी की वाइब मैच करने के लिए, एनर्जी मैच करने के लिए लोग आजकल कुछ भी मान जाते हैं कि अरे जेन ज़ी है, बोल रहे हैं कूल है तो कूल होगा, करने दो इन्हें. सो देखिए कल वाला जो मेरा वीकेंड है वो तो कुछ ऐसे ही चला गया इंस्टाग्राम को ये यू नो नोटिस करते हुए कि यार इसमें क्या क्या बदला है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं. और साथ में आप चार रील स्क्रॉल करो और सुबह के 11 से जो है शाम के 6 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है. तो मेरे साथ भी वही हुआ. कॉकटेल 2 मैंने देखनी शुरू की लेकिन मैं देख नहीं पाई, पूरी नहीं देख पाई एक्चुअली. सो आज उसे जाके कंप्लीट करूंगी. एंड उसके बाद कुछ ऐसी सीरीज हैं जो मैं देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन मन नहीं बन पा रहा है क्योंकि आज जो है ऑफिस आने की एक्साइटमेंट भी थी. यस, कभी कभी होती है वाली एक्साइटमेंट लेकिन थी. आप जो है इंस्टाग्राम पर जाकर देख लीजिए कि एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी. सो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए अभी के अभी और जाकर देखिए, और वहाँ तक जा ही रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, आपकी कशिश भी आपको वहीं पर मिल जाएगी. फिलहाल इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो है वो हम आपको बीच बीच में गाने सुना रहे हैं. सो तेरी मिट्टी जो गाना है परिणीति चोपड़ा की आवाज़ में ये आपको मैं सुना रही हूँ. सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, रेडियो ऑलिव.

क्या 106.3 रेडियो ऑलिव पर। खैर अब देखिए मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, तो मैं जाती हूँ आपको टाटा बाय बाय करके। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड अमेजिंग वाले गाने जो हम आपको सुना रहे हैं वो सुनते रहिए। बाकी आपकी कशिश के साथ आपको तो पता ही है, कहते रहना जियो बिंदास, स्टे ट्यून्ड।

हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज़ आई एम अ प्राउड इंडियन. 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंद.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
2: दीपिका पादुकोण,
1: रेडियो ओलिव 106.3।
3: I'm in number one, रेडियो
4: ओलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. A very happy Independence Day. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर
2: Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta, non-stop back to back gaane.

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

1947 से 2026 पूरे 80 साल हमने सिर्फ साल नहीं गुजारे, हमने इतिहास लिखा है। वो आजादी जो कभी एक ख्वाब थी, आज हमारी पहचान है। 80 years of freedom, millions of dreams, but one identity, Indian. इस 15th अगस्त को चलो सिर्फ अपने घर पर ही नहीं, अपनी आंखों में, अपने सपनों में फिर से तिरंगा फहराएं। Celebrate 80 years of pride and emotions with Radio Olive. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की

0: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज़ आई एम अ प्राउड इंडियन.
1: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif, Alkhol.
3: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
4: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: लाइव रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज अक्षय कुमार
1: और मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहां पे 2017 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में मैंने एक बात छेड़ी थी. 2017 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक विराट कोहली उस टाइम पे कैप्टन था टेस्ट टीम का, दूसरा विराट कोहली अपने पीक में था, तीसरा विराट कोहली के कैप्टनसी में इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम ने जो है जो एक एटीट्यूड अपना पाया और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को दिखाया कि भाई अगर तुम हमें कुछ बोलोगे तो हम उल्टा 10 बोलेंगे करके, बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग टेस्ट मैच. अगर हो सके तो आप यूट्यूब में जाके उसके शॉर्ट्स देख सकते हैं, काफी एडिट वीडियोस भी मिलेंगे. मगर जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट करते हुए परफॉर्म किया है उस पूरे सीरीज में, दैट्स ब्रिलियंट. और यही बात बोलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहां पे एक छोटा सा मैसेज मेरे पास आया है. मुझे एक फोटो भेजा है किसी ने, बहुत ही प्यारा सा फोटो भेजा है इंडिपेंडेंस डे का विश ये करते हुए, कन्वे करते हुए. और इससे मुझे याद आया, मैं एक बार एक स्कूल में गया था, ठीक है, जब मैं केरला में था, मैं एक स्कूल में गया था. उस स्कूल की खासियत ये थी कि वहां पे स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम में आते थे या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज जिनको होती थी, वैसे बच्चे थे. और इतने प्यार से उन्होंने जो है एक परफॉर्मेंस दिया था मेरे सामने. मैं एक गेस्ट के तौर पे वहां पे गया था, उस इवेंट का गेस्ट था मैं. और उन्होंने पूरा जो एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक डांस के थ्रू उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिखाया था. मैं बहुत खुश हुआ था वो देख के, बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के. तो ऐसे बच्चे जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और इन स्टोरीज के थ्रू जब वो सीखते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है. तो ऐसी कोई बहुत ही स्पेशल इंडिपेंडेंस डे मेमोरी अगर आपके पास है तो शेयर कीजिए 3311063 पर. और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: land of many languages and culture, the land of rich heritage and diversity. India. Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा. तो मेरी अपने अंकल से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, और वो हालचाल पूछ रहे थे, मैं भी हालचाल पूछ रहा था, बता रहा था, सब ऐसे बातें चल रही थी. फिर ऐसे ही हम थोड़े टॉपिक्स में डिस्कशन करने लग गए थे, और डिस्कस करते करते काफी गहरी बातें हो गई. अंकल भी दो मिनट के लिए चौंक गए कि ये लड़का इतना मैच्योर तरीके से भी बात कर सकता है, मतलब सही में करके. तो हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, और वहां पे करते करते एकदम से उन्होंने मुझे बताया कि एजुकेशन का जो मेन एम है, इट इज टू मेक यू थिंक. और कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है. लोग पढ़ना लिखना या फिर रीड करना या फिर इंग्लिश बोल पाना, इसको बहुत ही हायर एजुकेशन के इसमें ले लेते हैं. मगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना, कंपैशनेट बनना, ये भी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. और उन्होंने मुझे बताया था कि कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज कहते हैं कि हम काफी इनोवेटिव कंपनी है, मगर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट वहां पर यूज किया. वो स्टेटमेंट ये था कि अगर कंप्लायंस है तो इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन आने के लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू गो अ डिफरेंट रूट, और कंप्लायंस में वो चीज नहीं हो सकती. और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: A very happy Independence Day.
2: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
4: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे।
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: वेलकम बैक टू द स्विंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और तैयार हो जाए एक बहुत ही धमाकेदार सेलिब्रेशन के लिए स्कूल खुलने के पहले, क्योंकि रेडियो ऑलिव आपके लिए लेकर आ रहा है बैक टू स्कूल बैश जो होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में। तो मैं यही बोलूंगा कि जानी इंतजार किस बात का है, सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में olive.qa, वहां पे जाएंगे तो आपको एक बैनर दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए, उसके साथ वो जो फॉर्म आ रहा है वो भी फिल कर दीजिए ताकि आपको मौका मिले बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने के लिए जो 27th को होने वाला है, जहां पे बहुत सारे फन गेम्स सब होने वाले हैं, इवेंट्स होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज आई एम अ प्राउड इंडियन.
1: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. कुछ टाइम से लोग जो है कपड़ों में ब्रांड का लोगो जो है वो प्रेफर नहीं करते. वो सोचते हैं कि भाई लोगो लेस अपारल्स ज्यादा सही रहेंगे करके. बहुत सारे लोग आजकल वो प्रेफर करते हैं. इवन कई दफा मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी यही देखा है, लोगो लेस शर्ट्स, लोगो लेस टी शर्ट्स करके. ऐसे काफी कूल ट्रेंड है, मगर ब्रांड वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या इसके बाद, फिलहाल वो तो नहीं पता. यहाँ पे गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Akshay Kumar.
1: और मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को Happy Independence Day.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. 1947 से 2026, पूरे 80 साल हमने सिर्फ साल नहीं गुजारे, हमने इतिहास लिखा है. वो आजादी जो कभी एक ख्वाब थी, आज हमारी पहचान है. 80 years of freedom, millions of dreams, but one identity. India. इस 15th August को चलो सिर्फ अपने घर पर ही नहीं, अपनी आंखों में, अपने सपनों में फिर से तिरंगा फहराएं. Celebrate 80 years of pride and emotions with Radio Olive. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हर

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा. तो हम जानते हैं कि आज जो है 600 टेस्ट मैच जो है इंडिया खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में. और इंडिया ने अपना 100th टेस्ट मैच जो है जब खेला था, तो आपको पता है उस टाइम इंडिया के टीम का कैप्टन कौन था? बहुत ही फेमस नाम है, उनका नाम है मंसूर अली खान पटौडी. टाइगर भी बोलते थे उन्हें, सैफ अली खान के पापा थे वो. और काफी आइकॉनिक प्लेयर और काफी आइकॉनिक मैच. और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे जो है एक चीज आपको याद दिलानी है वो यही है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या किया. हाँ सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम खोलिए radioolive.qa, सर्च कीजिए, आप फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं और कई सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट भी जो है हमारे पेज में आते हैं जिसके थ्रू आप बहुत बहुत बढ़िया गिफ्ट भी जीत सकते हैं. तो यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेडियो ऑलिव.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, मगर पार्टी अभी बाकी है। और पार्टी जारी रखने के लिए, आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, आपके इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए सिमरन यहाँ पे आने वाली है। तो भाई खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिए, और जितना प्यार मुझे दिया है उतना उससे ज्यादा प्यार सिमरन को दीजिए। जाते जाते जाते हम यही बताना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: land of many languages and culture. The land of rich heritage and diversity. India. Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

मैंने कहा जी आजादी दिवस मुबारक हो, मेरा बैकग्राउंड का म्यूजिक इधर गया यार, इसके बगैर मजा नहीं आता। आपके साथ हैप्पी इंडियन इंडिपेंडेंस डे, आपको आजादी दिवस की बहुत बहुत मुबारक। कल मेरी छुट्टी नहीं थी तो मैंने, वैसे तो परसों जब शो खत्म किया था तब मैंने मेरे जो जितने भी हमारे पाकिस्तानी लिसनर्स थे उनको भी जश्न आजादी की मुबारक दे दी थी, लेकिन कल मेरा शो नहीं होता तो मैं आपको कल नहीं कह पाई, तो आज भी आपको बोल देती हूँ जश्न आजादी आपको भी मुबारक हो। सो या अभी मुबारक हो, सिमरन कौर आ चुकी है, 4 घंटे अपने बेबी, अब तो कहीं नहीं जाने दूंगी आपको मैं, वीकेंड भी ओवर हो चुका है। लेकिन आपका वीकेंड कैसा रहा, अगर आपका आज छुट्टी थी तो आज अभी तक आपका वीकेंड जो है चल रहा है? बाय द वे कैसा लगता होगा ना जब 2 दिन की बैक टू बैक छुट्टी मिलती होगी, अब मुझे तो पता नहीं है यार, मुझे तो सिर्फ फ्राइडे की मिलती है। सो आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजिए 3311063 पर, बाकी की बातें करेंगे और सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेडियो ऑलिव।

0: सीख ले।
1: हर साल की तरह इस साल भी मैं यही चीज बोलूंगी कि जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है तब स्कूल की याद आती है। क्योंकि स्कूल में मुझे लगता है कि हम सब की इंडियन इंडिपेंडेंस डे की मेमोरीज जो हैं वो वहीं से ग्रो हुई हैं, वहीं से आई हैं। और अगर कोई चीज़ हम मिस करते हैं तो इस टाइम पे स्कूल जो है, और स्कूल में एक तो छुट्टी की खुशी होती थी, जल्दी छुट्टी हो जाती थी और खाने पीने के लिए कितना कुछ मिलता था, और बच्चों को और क्या चाहिए, राइट। सो आज के दिन भी वो जो लड्डू हैं वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ भाई, मोती चूर के लड्डू जो मिलते थे। एंड यस, जब आप अपने देश से बाहर होते हो फिर अपने देश को जो है वो इतना सारा मिस करते हो, है ना, वो सारी वीडियोज़ और फोटोज जो है वो आप देखते हो। बट यस, आप सबको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी मुबारकें। और अपने कदर में भी है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अगर आप हमने यू नो हम अपने देश से दूर हैं लेकिन कतर में रह के भी हम अपने देश के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है यार। और बाय द वे, मुझे इंडिया वालों के लिए बुरा लग रहा है यार, छुट्टी अभी देखो सैटरडे के दिन ये वाला दिन आया है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी ये वीकेंड के बीच में चलेगी क्योंकि इंडिया का वीकेंड तो आज से शुरू होता है ना, तो बड़ा सैड फील हो रहा होगा, है ना यार, जब कोई छुट्टी आती है और वो वीकेंड के बीच में आ जाती है। और बताइए, वीकेंड के से याद आया, आपका वीकेंड कैसा रहा, मैं वापस लौट के बताऊंगी मेरा और आप अपना बताइएगा। 3311063 पर सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज़ आई एम अ प्राउड इंडियन.
1: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

तो फिर इट्स टाइम, एक हफ्ते में ये टाइम आ ही जाता है जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कैसा रहा आपका वीकेंड। थर्सडे जब शो खत्म कर रही थी तो मैंने आप सबको बताया था कि यार नो पीपलिंग जोन में हूं मैं, क्योंकि थर्सडे मेरा वीकडे पे बहुत ज्यादा बाहर आना जाना हो गया था, तो मैंने थर्सडे को सोचा था नहीं सिमरन कौर बस अब तो तुमको स्पेस लेनी ही लेनी है, तो वो स्पेस लेने का मेरा मन था और मैंने अपना फेवरेट वाला मील ऑर्डर किया और एक सीरीज देखनी मैंने जो है वो स्टार्ट की। सो या कुल मिला के मैंने बहुत बढ़िया वाला रेस्ट किया और मैंने फ्राइडे को भी आराम से उठी, मैं अपना फेवरेट वाला मील खाया और मैंने सोशल मीडिया भी स्क्रॉल किया ऑफ कोर्स, और उसके बाद मैंने एक बढ़िया वाली सीरीज जो थी वो भी देखी, तो कुल मिला के मेरा वीकेंड अच्छा रहा। और सुबह उठने में जो जान जा रही थी, क्योंकि जब आप दिन में सो लेते हो ना उसके बाद रात को नींद नहीं आती, और सैटरडे मेरा ऐसा होता है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठना होता है, बाकी दिन तो मेरा ईजी रहता है। सो या कुल मिला के मेरा वीकेंड अच्छा रहा और ये वाला वीकेंड जो है बस अब काफी ज्यादा बिजी जाने वाला है क्योंकि बर्थडे वीक है बेबी, समझा करो सिमरन कौर का। एंड सिमरन कौर से पहले, क्योंकि मेरा बर्थडे तो 23 अगस्त का आता है, उससे पहले एक ही दिन जो है वो 21 अगस्त को कशिश एंड तनीषा का बर्थडे भी आता है। सो या बहुत सारे बर्थडे ऑन द वे, सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: ट्रैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

सो आप लोगों को पता है कि मुझे पिज्जा और पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है, और जैसे ही वीकेंड आता है मेरे को ऐसे चूहे काटने लग जाते हैं, यार ये खाने खाने हैं। एग्जाम्पल इतनी गंदी देती हूँ, मैं खुद ही सोचने लग जाती हूँ कि मुझे चूहे काटने लग जाते हैं। ये कोई बात बनी है, बट आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो दैट्स ओके यार, जब आप अपनों के साथ होते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपको ये पता है कि आप जो बोल रहे हो सामने वाले समझ रहे हैं, तो आप लोग तो समझ ही जाते हो। सो पिज्जा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम सब ने आज तक जो है वो पिज्जा कितने का खाया होगा, महंगा से महंगा 100-150-200 रियाल का खा लिया होगा हम लोगों ने। लेकिन वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा पता कितने का है भाई साहब? मुझे पढ़ के ऐसा लगा भाई साहब, अगर मैं डेट पे गई तो मैं लड़के को बोलूंगी कि मुझे ये वाला पिज्जा दिला के दो। जस्ट किडिंग, आई कैन फाइनेंस माई सेल्फ, मैं लड़कों से पैसे नहीं लेती हूँ अपने खाने के। ओके फाइन, अगर ले भी लूँ तो मैं शेयर करती हूँ उनको, उनके पैसे अपना पैसा रखती हूँ। चलो ठीक है, सो ये तो बात हुई हिसाब किताब की। लेकिन यस, बात करते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा जो पूरी दुनिया में है, उसका रेट है 12,000 यूएसडी डॉलर। जी हाँ, ये 20 सेंटीमीटर का 8 इंच का पिज्जा रहता है, ये एक पाए तरीके से बना होता है, और ये दो लोगों के लिए होता है, मतलब 6-6-12, मतलब 6,000-6,000 ईच दोनों के लिए पड़ गया। बट 12,500 यूएसडी डॉलर के इस पिज्जा में क्या है, जानना चाहूंगी मैं यार। सिमरन गौरी आपके साथ जी।

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. A very happy Independence Day.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: दोस्तों, हो जाए फिर मौसम की बात।
1: मौसम
0: सुना देते हैं। सिमरन कौर के साथ जो है वो आप सुन रहे हैं जबरदस्त इवनिंग्स। और मौसम क्या जबरदस्त हो रखा है, गर्मा गर्म एकदम। आज तो ना दिन में टेम्परेचर 43 था, लेकिन फील्स लाइक 49 डिग्री सेल्सियस था। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का है 44 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 34 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो चेक करें तो रात होते होते मैं देखती हूँ ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो आज मतलब 52 लेट नाइट तक जो है वो पहुंच जाएगा। एंड ह्यूमिडिटी हम सबको पता ही है कि बैंड बजने वाली है हम सब की, बस कुछ दिनों बाद मतलब अगस्त निकल जाए, मुझे लगता है कि सितंबर में माहौल जो है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिल बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कभी भी हिट करती है यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Land of many languages and culture. The land of rich heritage and diversity. India. Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं और जिनकी छुट्टियां चल रही हैं, बैक टू स्कूल में अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अब तक हमने उनके साथ कुछ खेला नहीं है यार, चलो फिर। लेकर आ चुका है और ये हर बार होता है कि उनके स्कूल खुलने से पहले हम उनके साथ जो है वो फन करते हैं। और देखो यार, समर वेकेशन खत्म होने से पहले एक बहुत तगड़ा जो है वो सेलिब्रेशन तो होने चाहिए। सो बैक टू स्कूल बैश जो है वो होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेकर शाम के 7 बजे तक। बहुत सारी गेम्स, क्रेजी चैलेंज, बहुत सारा धमाल जो है वो होने वाला है। तो आप अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दीजिए, बच्चे हम पे छोड़ दीजिए। सो उससे पहले आपको एंट्री के लिए क्या करना होगा, खुद को रजिस्टर करवाना होगा, जो कि बहुत ही इजी है। सो क्या करना है, olive.qa जो हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाके फॉर्म फिल करिए। सीट्स लिमिटेड है, फिर बाद में मत कहना कि यार बताया नहीं, अब बता रही हूँ, रजिस्टर कर लो olive.qa पे जाके।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: A very happy Independence Day.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: नोटिस किया? नहीं किया है तो अब आप नोटिस करोगे क्योंकि मैं बताने वाली हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: हां जी ओल्ड दोहा पोर्ट ओपन हुआ है, ये अपने कतर में एक ऐसी जगह बन गई कि जहां पर आपको अगर थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है, आपको कुछ वेंट आउट करना है, आपको अकेलापन चाहिए या फिर आपको अपने दोस्तों का साथ चाहिए, ये एक ऐसी जगह है और सर्दियों में तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं है, यहां पे जाके अब माहौल जो है वो गर्मी के टाइम पे भी ठंडा लगता है। बट मैं बात क्या कर रही हूं, किस चीज की बात कर रही हूं, बात ये कर रही हूं कि अभी ओल्ड दोहा पोर्ट पे ट्रांसपेरेंट ग्लास सेफ्टी बैरियर जो है वो लग गए हैं मीना कॉर्निश और मीना डिस्ट्रिक्ट वाली साइड। अगर आपको ऑफ कोर्स सामने पानी है, बच्चे खेलते भी रहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो प्रोटेक्शन की लग गई है। अगर आपने पहले नोटिस नहीं किया था तो अब जाके नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि और भी माहौल जो है वो थोड़ा सा सेफ हो गया बच्चों के खेलने के लिए। सो या सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज़ आई एम अ प्राउड इंडियन.
1: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: जेन जी अलिंगो के एक और वर्ड को डिकोड करते हैं।
1: जेन जी डिकोडेड।
2: ऐसे ही क्या?
1: दा दा दा।
0: जब आप किसी बात के लिए अग्री करते हैं और या फिर ये वर्ड यूज करते हैं, यस एब्सोल्युटली, लेकिन जेन ज़ी जो है वो अपनी एक लिंगो है, यस एब्सोल्युटली ना बोल के वो बोलते बेट, यू बेट ब्रो, आपने सुना होगा बहुत बार। सो या, ये है एक और वर्ड जो कि जेन ज़ी लिंगो में जुड़ चुका है, काफी टाइम से वैसे तो जुड़ चुका है। आपने बहुत सारी अंग्रेजी फिल्म देखी होंगी, उसमें बोलते हैं यू बेट, बेट ब्रो। सो या, सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
3: Radio Olive Park.
4: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
3: Fresh song of the hour.
4: Ye gana.

0: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Akshay Kumar.
1: और मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को Happy Independence Day.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन। ये जो फिल्म है राजू बन गया जेंटलमैन, इसका नाम शुरू से ये नहीं था। इस फिल्म का नाम पहले रखा गया था आसमां से आगे, और ये पहली फिल्म थी जो शाहरुख खान ने साइन की थी। लेकिन जब ये रिलीज हुई तो ये उनकी चौथी फिल्म बन गई। और इस टाइम पे, इस फिल्म के दौरान, जूही चावला एंड शाहरुख खान ना बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद ये बिजनेस पार्टनर भी बन गए। सो या, और भी इस फिल्म से जुड़ी हुई मैं आप बातें आपको बताने वाली हूँ। सिमरन कौर है आपके साथ, मैं गया जी जबरदस्त इवनिंग्स में। जी अविंदास, फिर आ रही हूँ थोड़ी देर में।

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. Independence Day.
1: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. Main hoon Jackie Shroff. Radio Olive, bolo bindas.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. उसका नाम है राजू बन गया जेंटलमैन. शाहरुख खान पहली बार उन्होंने एक फिल्म में इकट्ठे काम किया था और जूही चावला के 25th बर्थडे पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था. और इसमें गाना है ना लवेरिया हुआ. जी हाँ, लवेरिया हुआ गाना का टाइटल लेके सोचा गया कि एक फिल्म बनाई जाएगी जो कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की थी, लेकिन वो फिल्म फिर कभी बनी ही नहीं, जिसमें सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, मनीष बहल, बहुत सारे लोग जो थे वो होने वाले थे. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा घटा जो कि किसी ने सोचा नहीं था. अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी कर ली. जी हाँ, सब एकदम शॉक्ड रह गए, लेकिन समहाउ उन्होंने फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया. सो या, कोई भी फिल्म जब बनती है ना उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं. हम तो बनी बनाई फिल्म देखते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें पता लगती है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आता है यार. सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day. A very happy Independence Day.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: चाहता है।
1: देखो यार, अपनी लाइफ में वैसे तो स्ट्रेस के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे आजकल लगता है कि सोशल मीडिया भी है।
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
1: जरूरी है। किसने किसकी फोटो लाइक कर दी, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, किसी ने किसी की स्टोरी को म्यूट कर दिया, कोई किसी को स्टॉक कर रहा है और किसी की स्टोरी देख के किसी का दिमाग खराब हो गया, किसी ने मेरी स्टोरी नहीं देखी जिसके लिए आपने स्टोरी लगाई थी। तो बहुत सारा स्ट्रेस ना सोशल मीडिया को लेकर होता है, बहुत सारे कलेश का होता है, बहुत सारे रिश्ते जो है वो सोशल मीडिया को लेकर खत्म होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है ना वो सोशल मीडिया से बिल्कुल ही निकल जाते हैं क्योंकि कांड हो जाता है उनकी जिंदगी में। सो सोशल मीडिया एक्चुअली बहुत सारी चीजें दिखाता भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में और आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज्यादा इधर उधर कर देता है। तो एटलीस्ट सोशल मीडिया का जो स्ट्रेस है ना उसको अपनी जिंदगी से दूर रखें क्योंकि अपने पास और बड़े बड़े स्ट्रेस हैं यार लाइफ में। सोशल मीडिया की वजह से स्ट्रेस मत लीजिए। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास, क्योंकि आधी चीजें जो लोग पोस्ट करते हैं वो कभी कभी झूठ होती है जो कि आपके स्ट्रेस का कारण बन जाती है, ट्रस्ट मी।

0: land of many languages and culture. The land of rich heritage and diversity. India. Radio Olive 106.3 FM wishes all the Indian listeners a very happy Independence Day.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

दोस्तों, अब लेने वाली हूँ आप सबके नाम, लेकिन मुझे नहीं पता आपके नाम क्या है, वो तो आप बताएंगे ना। ऑल राइट, आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे ले लूं तो रूल आपको पता है कि आपको मुझे बस अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम बोलूं, चलो अगला गाना शुरू होने से पहले नाम बोले स्टार्ट कर रही हूं। मुजाहिद जी, थैंक यू सो मच। दानिश जी, थैंक यू सो मच। आजमा जी, थैंक यू सो मच। इमरान जी, थैंक यू सो मच। एके जी, थैंक यू सो मच। जाकिर जी, थैंक यू सो मच। मनी जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। संधू जी, थैंक यू सो मच। नजीम उल्ला जी एंड शिराज जी, थैंक यू सो मच। आसिफ जी, थैंक यू सो मच। हसीन जी, थैंक यू सो मच। जोल्टन जी, थैंक यू सो मच। अहमद जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, अदील जी, उमर जी, यूसुफ जी, विड्स जी, सुमन जी, थैंक यू सो मच। अशफाक जी, थैंक यू सो मच। समरथ जी, थैंक यू सो मच। तौफियाल जी, थैंक यू सो मच। तीरथ जी, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। शाहिद जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, बड़ा आप थैंक यू लिख सकते हो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से आई वांट टू विश ऑल द इंडियंस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिकॉज आई एम अ प्राउड इंडियन.
1: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का जो चेंज किया है, सॉरी इसको आइकन बोलेंगे, जो आइकन मैंने चेंज किया है वो है थ्रो बैक फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे वो पुराने वाला जो है ना वो आइकन वो बड़ा सही लगता है, क्योंकि उससे वो फील आती है जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। सो या आप भी जो है इंस्टाग्राम का आइकन चेंज कर सकते हैं, जहां पे इंस्टाग्राम लिखा वहां पे आप लॉन्ग प्रेस करिएगा, फिर वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज अक्षय कुमार
1: और मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
3: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

यार ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, तो मुझे पता लगी है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्रैकर्स कौन कौन खाता है? हम सबने खाए हैं यार अपनी लाइफ में। क्रैकर्स में वो होल रहते हैं, राइट? वो डिजाइन के लिए नहीं होते हैं, मुझे अब जाके पता लगा है। वो ये होता है कि जब उनको बेक किया जाता है बेकिंग प्रोसेस में, उसमें जो स्टीम है वो निकल सके, इसीलिए वो टाइनी टाइनी जो वेंट्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि हॉट एयर जो है वो अंदर ट्रैप हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो एक फ्लैट डो पफ जैसा बन जाएगा, वो क्रैकर नहीं बनेंगे। तो वो छोटे छोटे होल इसलिए किए जाते हैं ताकि वो उससे हवा जो है वो एयर जो है वो निकल सके बाहर और आपको क्रैकर जो है वो वैसा मिल सके। सो या मेरे को तो ये चीज पता नहीं था, क्रिस्पी टेक्सचर आ जाता है यार उसकी वजह से। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

डार्लिंग क्या हाल है मैं गजी सोनियो की दादी की हाल चाल छोड़ी चीजों के लिए बर्थडे तो बहुत बड़ी चीज होती है यार। सो अभी के लिए कल शाम को 5 बजे होती है आपसे मुलाकात। सो खंड मिंद्रो ऐश कर दे रो चेहरे दे बड़े स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो वीकेंड है प्लस इंडिपेंडेंस डे भी है आज. तो वीकेंड आते ही ना इंसान के अंदर की असली पर्सनालिटी बाहर आ जाती है. एक बंदा फ्राइडे को ही मैसेज करेगा कि गाइस व्हाट्स द प्लान, और आज तो सैटरडे है तो अब वीकेंड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और दूसरा फोन देखकर सोचेगा कि प्लीज कोई प्लान मत बताना. सो हर किसी के लिए ना वीकेंड का मतलब अलग होता है. रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स, लॉन्ग ड्राइव्स, और किसी के लिए बस कर्टन्स बैंड हो जाएं और फेवरेट फूड और कंप्लीट साइलेंस. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों गलत नहीं है. हम सब रिचार्ज ना अलग तरीके से होते हैं. कुछ लोग पीपल से एनर्जी लेते हैं और कुछ लोग पीपल से ब्रेक लेकर एनर्जी लेते हैं. सो वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी अपने मूड को समझने की ज़रूरत है. सो आप बताइए कि आपका वीकेंड पर्सनालिटी क्या है, पार्टी, लोग, फूड या फिर पीस. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है यस मिडनाइट लाउंज. आपके फोन में एक ऐसा फ्रेंड जरूर होगा जिससे मिलते ही दोनों बोलते हैं कि यार वी नीड टू मीट मोर ऑफन, और फिर नेक्स्ट मीटिंग 3 महीने के बाद. फनी थिंग इज कि फ्रेंडशिप खत्म नहीं हुई, मैसेज कम हो गए, मिलना कम हो गया, लेकिन जब मिलते हैं तो कॉन्वर्सेशन वहीं से कंटिन्यू हो जाती है जहां पर पिछली बार खत्म की थी. शायद अडल्ट फ्रेंडशिप की खूबसूरती ही यही है यार, हर रोज बात करना जरूरी नहीं होता. कभी कभी डिस्टेंस रिलेशनशिप को कम नहीं करता, बस उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देता है. और कुछ लोग आपकी डेली लाइफ में नहीं होते लेकिन दिल की परमानेंट लिस्ट में जरूर होते हैं. सो आज रात एक नाम याद कीजिए, वो दोस्त जिससे आप जेन्युइनली मिलना चाहते हैं लेकिन सून कभी आता ही नहीं. क्या पता वो भी आपके मैसेज का ही वेट कर रहा हो. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. नाम बताइए 3311063 पर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मिडनाइट लाउंज।
2: ओह नो, फिर से स्कूल।
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

आज एक डिफिकल्ट चॉइस है. इमेजिन आपको एक एब्सोल्युटली परफेक्ट वीकेंड मिलता है. ब्यूटिफुल प्लेस, अमेजिंग फूड, परफेक्ट वेदर, परफेक्ट कंपनी, लेकिन एक कंडीशन है, एक साल बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा. सेकेंड ऑप्शन, वीकेंड बिल्कुल ऑर्डिनरी है, कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं, कोई एक्सपेंसिव प्लान नहीं, बस एक शाम किसी अपने के साथ, और वो मोमेंट आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा. आप क्या चूज करोगे? क्योंकि समटाइम्स वी थिंक कि मेमोरीज आर क्रिएटेड बाय बिग एक्सपीरियंसेस, बट ईयर्स लेटर वी रिमेंबर दैट वन लाफ, दैट वन कॉन्वर्सेशन, दैट वन ड्राइव, दैट वन ऑर्डिनरी इवनिंग. मे बी अ परफेक्ट लाइफ इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग परफेक्ट डेज, इट्स अबाउट कलेक्टिंग मोमेंट वर्थ रिमेंबरिंग. सो आप बताइए कि परफेक्ट वीकेंड का अनफॉरगेटेबल मेमोरी दोनों में से क्या पसंद है आपको? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, नंबर इज सेम 3311063. मुस्कान है आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज,
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Welcome back. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. So, restaurant mein ek universal problem hoti hai. Menu aapne khud choose kiya. Food aapke saamne aa gaya. Aap ek bite lete ho. Nice. Phir side wale ki plate aati hai aur suddenly, wait. Maine ye kyon order nahi kiya? Bas, ye aata hai dimag mein. Aapka food wahi hai, taste bhi wahi hai. Lekin, dusre ki plate suddenly मिशलन स्टार डिश लगने लगती है। इसके पीछे ना एक सिंपल सी ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसे कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। हम अनकॉन्शियसली दूसरों की चॉइस को इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करते हैं, और ये सिर्फ फूड में नहीं होता, करियर में, फैशन में, ट्रैवल में, इवन लाइफ के डिसीजंस में भी होता है। सो कभी कभी हमें अपनी प्लेट बुरी लगने लगती है और बस सामने वाले की प्लेट अच्छी लग रही होती है। सो टनाइट्स क्वेश्चन इज कि आप अपना ऑर्डर कॉन्फिडेंटली चूज करते हैं या टेबल पर सबकी प्लेट देखकर रिग्रेट शुरू हो जाता है, भाई मैं ये दूसरे वाले में आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये ऑर्डर क्यों नहीं किया। आप मुझे बताइए 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
1: ये है मिडनाइट लव. ये है मिडनाइट

डिनर पर आ रहे हो ना, आपका दिमाग नो, आपकी जुबान हाँ हाँ डेफिनेटली, व्हाई डू वी डू दिस, मतलब कभी किसी दो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए किसी को भी, पर कभी ऑकवर्ड लगता है, कभी लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो हम यस बोल देते हैं और बाद में खुद ही अपने वीकेंड के स्केड्यूल देखकर परेशान हो जाते हैं। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, नो बोलना सेल्फिश होना नहीं है। आप हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हर फोन कॉल नहीं ले सकते, हर प्लान का पार्ट भी नहीं बन सकते। और बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो रहे हो, इट सिंपली मीन्स कि आप अपने टाइम को भी इम्पॉर्टेंट समझते हो। तो बताइए आपके लिए क्या हार्ड होता है, लाइक नो बोलना या यस बोलकर बाद में कैंसिल करना। देखिए मैं तो मतलब उनमें से आती हूँ जो कई बार ना बोलना चाहती हूँ लेकिन ना बोल नहीं पाती, और बाद में बस कैंसिल भी नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि अब बोल दिया है, किसी ने तैयारी कर ली होगी, कोई वेट कर रहा होगा, बस इसी कन्फ्यूजन में उस पूरे दिन को ख़राब कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मुस्कान है आपके साथ, ये है मिडनाइट लाउंज।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सैटरडे नाइट नेटफ्लिक्स खुला हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ मूवीज अवेलेबल हैं और हम वही पुरानी मूवी जिसका एंडिंग पता है, डायलॉग्स पता है, हीरो कब एंट्री लेगा वो भी पता है, फिर भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि समटाइम्स एंटरटेनमेंट इट्स व्हाट वी नीड, कंफर्ट हमें चाहिए होता है भाई एंटरटेनमेंट के साथ। न्यू मूवी का मतलब है अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, नए कैरेक्टर्स, नए इमोशंस, बट एन ओल्ड फेवरेट, राइट? वी ऑलरेडी नो दैट वर्ल्ड इज सेफ। मे बी दैट्स वाई चाइल्डहुड मूवीज जो हैं वो बहुत डिफरेंट फील करती हैं। दैट्स यू नो जस्ट बिकॉज की जो फिल्म हैं वो दे आर प्लेसेज वेयर वी आर इमोशनली विजिटेड बिफोर। आप मूवी नहीं देख रहे होते, आप अपनी एक पुरानी वर्जन से मिल रहे होते हो। सो आप मुझे बताइए कि आपको कोई नई मूवीज देखना पसंद है या फिर आप बार बार अपनी कोई कम्फर्ट मूवी को देखना पसंद करते हो वेन यू आर विद पीपल अराउंड जो आपको डायलॉग्स तक पूरे याद हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. इमेजिन आप डिनर टेबल पर चार लोगों के साथ बैठे हैं, एक पर्सन कंटिन्यूसली फोन चेक कर रहा है, एक सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है और एक बिल्कुल चुपचाप है, और एक ऐसा है जो सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है और जेन्युइनली सुन भी रहा है. और बताइए कि आपके पास बैठना किस तरह के लोगों के साथ बैठना होगा, मतलब आप किस तरह के साथ बैठना चूज करेंगे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कहते हैं हमें फनी लोग पसंद है, सक्सेसफुल लोग, इंटरेस्टिंग लोग, लेकिन एक्चुअली गुड कंपनी का सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है मेकिंग यू फील हर्ड. मतलब किसी के साथ बैठकर अगर आपको लगे कि आई डोंट हैव टू परफॉर्म हियर, दैट्स रेयर. मतलब मे बी गुड कंपनी वो नहीं होती जो सबसे ज़्यादा बोलती है, गुड कंपनी वो होती है जिसके साथ साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं लगता और आपको लगता है कि यहाँ पर आप जज नहीं हो रहे हो. सो आपके लिए एक परफेक्ट डिनर जो कंपेनियन जिसे कहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कॉन्वर्सेशन, लिसनिंग या ह्यूमर? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव में, उसका नंबर है 3311106. Stay tuned, Jio Bindas.

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. आज सैटरडे है और हमने वीकेंड को ही एक प्रोजेक्ट बना दिया. डिनर प्लेट चेक, मूवी चेक, शॉपिंग चेक, फ्रेंड्स चेक, फोटोज डेफिनेटली चेक. लेकिन इमेजिन कीजिए, कल कोई अलार्म नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, बस आप, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा म्यूजिक हो और पूरा दिन बिना किसी एजेंडा के. क्या वो वेस्टेड वीकेंड होगा? मे बी नॉट. मे बी रेस्ट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी यार. हर वक्त कुछ अचीव करना, हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाना, ये भी एक्सॉस्टिंग हो सकता है. कभी कभी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स वो होते हैं जब कुछ स्पेशल हो ही नहीं रहा हो, बस घर पीसफुल हो, अपने लोग पास हो और दिमाग कह रहा हो कि आज कुछ करने की जरूरत नहीं. सो सैटरडे तो हो गया खत्म, कल हो रहा है हमारा नया वर्क वीक स्टार्ट, यानी कि संडे. सो अगर कल दुनिया आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे तो आप अपना संडे कैसे स्पेंड करना चाहोगे बताना जरूर 3311063 पर. मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं मिडनाइट लाउंज, जहाँ वीकेंड में प्लान से ज्यादा कहानियों की जरूरत होती है. गुड नाइट फॉर नाउ, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।